0: का लागि हिमालय मावि घियामा कक्षा बाल विकास देखि कक्षा 9 सम्म भर्ना खुलेकाले आफ्ना नानी बाबुहरूलाई समयमै भर्ना गर्न हुन सम्पूर्ण अभिभावकहरूमा हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। हिमालय मावि घियाका विशेषताहरू शान्त वातावरण सृजनात्मक तथा दक्ष शिक्षकहरूद्वारा पठन पाठन गराइने कम्प्युटर ल्याब तथा विज्ञान ल्याबको व्यवस्था भएको प्रधानाध्यापक हिमालय मावि घिया कैलाली।
1: कौनो व्यक्ति है लिंग लैंगिकता यौनिकता सामाजिक भूमिका और शरीर के आधार में करल अन्याय दमन दुर्व्यवहार और नियंत्रण लैंगिक हिंसा हो।
2: कोट पीट धक्का मुक्का चोट पुगैना गाली गलौज धाक धमकी अपमान कैना जबरदस्ती दुराचार अवांछित स्पर्श दबाव ओ शोषण पैसा में नियंत्रण रखना कौनो ठाव में पैठे नाई देना बोले नाई देना जैसी गतिविधि से लैंगिक हिंसा के उदाहरण हुई
1: ऐसी गतिविधि कोई कैना करैना कानूनी रूप में दंडनीय अपराध हो। तब मारे हिंसा देखले से ओ भोगले से मौन नहीं बैठी। OCMC स्थानीय निकाय सुरक्षित आवास गृह महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केंद्र महिला सेल में संपर्क करी।
2: अठवा पैसा नहीं लगना नंबर नेपाल प्रहरी के 100 महिला आयोग के 1145 बाल हेल्पलाइन नेपाल के 1098 नंबर में सीधा संपर्क करी। ओ सीधा अदालत में थे जय से जय।
1: हिंसा अपने फैनाई करी यदि हुई देखले से हिंसा विरुद्ध खुल के आवाज उठाई। सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मंत्रालय महिला समुत्थान परियोजना धनगढ़ी कैलाली।

0: ओइ रजनी वहाँ 62 नम्बर लट्ठी बा देखाओ तो अच्छा देखाओ तो
1: मुर्गिन दाना देना जा रहा मैं काकर न ठीक खा देती अब न
0: एक तो तपवा का मुर्गिन फा रखे लट्ठी से डुरेले से बक्सा की आनो हाली झट्टा
1: तापन हिस्याई चलाई नहीं हुई थी नहीं तो अमन दस श्याकर बेन घर भीतर आए लाई कल से भगई दी
0: पारक भीतर पेट का मुर्गी मुआडी और खाली कहीं का भगाए खोज रखो का
1: आरम कीड़ा फटिंदा मुझ सांप सिर नीचे आकर कहीं का फलाम का जारी लगा बात तप्पा मुर्गी खेती बुगाई नहीं थे कि बेन अपना ना दाखी दूरा रबीना
0: हो बिना था क्या करना हो तप्पा देखती कि दर नागा लगना रही था देव तप्पा तो अपन ना घूम का बारी वो कल गिनता
1: हमरे के सांपन से डरे ना नहीं होनी मुखरखे अमन से डरे था यदि क्यों जान अनजान में चलाई लगी पति रक्षा करत लाख व अपन बचाव करत लाख सांप दस ना कर था
2: सांपन से दूर रही सांपन रीस नी लगाई व नी जीस के सांप मने देख कर डरे था नी चलाख दूर रहसिल सांप नी दस्त तर मुकुर खैना खाज बाहिर निस्कल जाना मग घास काट बेल खाल बेल ड्यांग बेल छू बेल से मनै मही मारकलाग बाट कना सबसक प्रतिरक्षा कना क्रम मा सांप दस लाख रठ मनै सापन व्यक्ति की मारक लाग रठ उसी का कर बेल थे सांप दस लाख रठ
3: सर्पदंश संबंधी भर पर्द हो सही जानकारी प्राप्त कर ओ लंघक सर्पदंश उपचार केन्द्र कहाँ बाकै छ पत्ता लगाए लाख आधिकारिक वेबपेज www.snakebitenepal.org मा हेर सेधिथा
4: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश
5: लैंगिक हिंसा प्रभावितहरूको गुणस्तरीय बहुपक्षीय न्यायिक सेवाका लागि टीकापुर अस्पतालमा रहेको एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र ओसीएमसीसँग सहकार्य गरौं।
6: यो ओसीएमसी भनेको के आयो फेरि?
7: ओसीएमसी भनेको लैंगिक हिंसा प्रभावित महिला बालबालिका तथा पुरूषहरूलाई एकीकृत रूपमा बिना भेदभाव गुणस्तरीय सेवा चिकित्सा जन्य प्रमाण संकलन र संरक्षण आवश्यक मनोविमर्श सेवा आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था र परिवार वा समुदायमा पुनस्थापना जीविकोपार्जन तथा कानूनी सहयोग र सुरक्षित आवास उपलब्ध गराउने उद्देश्यले तोकिएको केन्द्र प्रदेश वा जिल्ला अस्पतालहरूमा व्यवस्थापन गरिएको संकट व्यवस्थापन केन्द्र हो।
6: ओसीएमसीले के सहयोग गर्छ त?
7: यस अन्तर्गत 2078 सालबाट टीकापुर अस्पतालमा पनि ओसीएमसी स्थापना भई लैंगिक हिंसा प्रभावित र पीड़कलाई समेत स्वास्थ्य लगायत सूचीकृत सबै सेवाहरू उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ। त्यसैले कुनै प्रकारको लैंगिक हिंसा प्रभावितहरूको स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक परामर्श सेवाका साथै अन्य सूचना तथा जानकारी लिनका लागि टीकापुर अस्पताल ओसीएमसीमा सम्पर्क राख्नुहोला।
8: थप जानकारीका लागि ओसीएमसी टीकापुर अस्पतालमा सम्पर्क राख्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 9854 89213 इमेल ocmcticapur@gmail.com।
9: घर त जेनतेन लगाइयो, अब झ्याल ढोकाको लागि काठ कहाँ पाउने होला? काठ पनि सुन जस्तो महँगो, के गर्ने के नगर्ने?
10: त्यसको लागि के चिन्ता गर्नुहुन्छ भाइ? काठ भन्दा सस्तो देखिनामा पनि राम्रो आल्मोनियमको झ्याल ढोका बनाउनुहोस् न।
9: ए हो त, कहाँ पाइने रहेछ दिदी आल्मोनियमको झ्याल ढोका?
10: कहाँ हुनु भाइ, टीकापुरमा जमरापारी छ नि मिलन आल्मोनियम ग्लास हाउस, त्यही जानु होला नि।
9: अब त म ढुक्क।
11: मिलन आल्मोनियम एन्ड ग्लास हाउस जमरापारी टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहनदास भाट।
10: मोबाइल नम्बर 9848513426। जमरापारी टीकापुर कैलाली।
9: बाबु ए बाबु, काल मनीष मेडिकल में जाइस तो?
6: मै नै जाइ, वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू।
9: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो। यहाँ हेल ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरानी हुकन बढ़िया डॉक्टर वही से उपचार हुई था वही तोर समस्या फैन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए।
6: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं, तब तुम्हें अब भी जाए।
12: याद गर्वी मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा प्रत्येक महिना के दोस्रो शनिबार काठमाडौँ के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौन्दर्य रोग विशेषज्ञ डाक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा पुरान से पुरान अनुहारमा रहल चाया पोटो डन्डीफोर दाँत खुजली भुटला झर्ना कपार के तालु खुल्ना डेन्ड्रप इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नै हुइल घाव खतिरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होइति रहल बा। सम्पर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नम्बर 9860071024 ओ 9046477417।
13: के तपाईलाई थाहा छ
14: एउटा प्लास्टिक झोला नष्ट हुन सयौं वर्ष लाग्छ। फालिएको प्लास्टिकले नदी माटो वनस्पति जनावर मानिसलाई असर गर्छ।
13: हो र
14: हो त हामीले तिनै प्रदूषणमा हुर्किएका विषाक्त वस्तुहरू खान्छौ, प्लास्टिकमा बोकेका झोल पदार्थ उपभोग गर्छौ,
13: अनि
14: खानासँगै प्लास्टिक जन्य पदार्थ पेटमा जान लागेकाले क्यान्सर जस्ता प्राणघातक रोगहरू लाग्न थालेका छन्। प्लास्टिक खानबाट जोगिन यसको विकल्प रोजौ।
13: के छ त विकल्प?
14: सामान बोक्दा कपडाको झोला प्रयोग गरौं, पकाएको तथा झोल खानेकुराहरू प्लास्टिकबाट टाढै राखौं।
13: विस्तारै गर्दा हुँदैन?
14: हुँदैन। टीकापुर नगरपालिकाले साउन 1 गतेबाट प्लास्टिकको झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ।
13: प्लास्टिक हटाऊ पृथ्वी बचाऊ।
14: प्लास्टिक हटाऊ पृथ्वी बचाऊ। टीकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय सरसफाई शाखा टीकापुर कैलाली।

0: कबू का पिए रही था, कबू पेंसिल ले रही था, कबू झोले फटाका आजी था, काकना हो काकना हो। बाबा के ओस्ट बाटिन गटिलो ठाउँ से झोला अनला से तो लड़का सामान नहीं हरत।
1: ओहो, ये बुढ़ाल लिख में का हुई थी, जरम भर भर बराई थी रहत।
0: का हुई? कबू लड़का कॉपी हेरा कई था, कबू पेंसिल हेरा कई था, कबू झोले फटा कई था, बढ़िया ठाउँ से झोला लाना नहीं चिपठो।
1: अरे कहाँ से नानम था?
0: कहाँ से लनबो? वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गई झोला उडोक में से। वहाँ झिंगलान दीदी कटरा से गुर झोला अनला बाटी, ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी, ना कबू पेंसिल ले रही थी, ना झोला फाटल हुई थी, कहीं एक आनंद झोला दस काटस बाटिन। ये बुढ़ोक ढंग कबू पसल छान कर ना झोला नहीं आना से आकट हुई।
1: लिया लिया मैं अब भी ही जाइबू रट गई झोला उद्योग में। रत गैया झोला उद्योग,
2: झोला उद्योग
1: हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत, जैसे स्कूल बैग, कैरिंग बैग, फाइल बैग, लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए। पुरान बिगड़ा झोला है मरम फेकरा जाए, एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी।
3: प्रोपराइटर राम प्रसाद रत गैया, संपर्क मोबाइल नंबर 98484223।

0: नयाँ वर्ष 2083 सालके पावन अवसरमे सबको ग्राहक व्यापारी शुभचिन्तक दादु भैया दिदी बहिनी क्रममा सुख शान्ति समृद्धि एवं उत्तर प्रगतिके हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त करती।
1: हमारे यहाँ थारू पहिरनके लेहेंगा चोलिया धोती सिलाई कना के संगे रेडीमेड फे उपलब्ध करा जाए और कुर्ता सुरुवाल फैशन डिजाइन के कपड़ा सिलेना और सिलाई कटाई के तालीम फे करा जाए। एक तो सेवा करना मौका जरूर देवी।
0: अभी फैशन बुटीक सामुदायिक पुस्तकालय भवन टीकापुर कैलाली संचालक प्रतीक्षा चौधरी फोन नंबर 98 68 77 08 25।
2: नववर्ष 2083 सालको हार्दिक मंगलमय शुभकामना। सबै बालबालिकाको विद्यालयमा सहभागिता गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्तिको सुनिश्चितता भन्ने मूल नाराका साथ विद्यालय भर्ना अभियान 2083 शुरू भइसकेको छ। सबै अभिभावकहरूले आफूलाई पाएक पर्ने नजिकको विद्यालयमा आफ्ना बालबालिका भर्ना गर्न हुन अनुरोध गरिन्छ। अध्यक्ष टोप बहादुर केसी नारायणपुर सामुदायिक सिकाई केन्द्र तथा अध्यक्ष मणिराम ढुंगाना भानु सामुदायिक पुस्तकालय तथा स्रोत केन्द्र सत्ती।

0: सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम के बिहान के 9 बजे ठारू भाषा खोज खबर में यहां उकरण स्वागत बा। खोज खबर से रतन चौधरी के राम राम। अब अपने खुकरे सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ट्ज के संगे अनलाइन में www.tikapurfm.org मोबाइल एप हाम्रो पात्रो नेपाली पात्रो में फिर सुनते रहल बाटी। खोज खबर शुरू करी खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक से। सरकार से भन्सार में कर्रा करल पाछे कैलाली के व्यापारी हुकरन के समर्थन, टीकापुर में व्यापारी खुशी। कैलाली के टीकापुर भजनी के थापापुर में हाथ से गुड़िया हो जनावर के आकृति बना के 90 से ढेर मेहरू रोजगार, मासिक 10 से लेके 20,000 सम आमदनी करती। ई वर्षा खड़ेरी के जोखिम संभावना रहले गोर से सुखा जात के धान लगेना किसान उकरण कृषि मंत्रालय के सुझाव। ओ कांग्रेस आज से सुरु पश्चिम प्रदेश स्तरीय भेला आयोजन करती। आप पूरा खबर। सरकार से 100 रूपया के सामान फे भन्सार कर लगेना नियम कैलाली के कारण कैलाली के ठिकापुर के व्यापारी हुकरा समर्थन करल बाटे। वहां हुकरा सरकार से करलक इन निर्णय के स्वागत करती। सरकार से समेत कर प्रणाली में सुधार होना के साथ ही स्थानीय व्यापारी हुकरन फे फायदा पुगना टीकापुर के व्यापारी दीपेन्द्र कठाईट बटुले बाटे। दीपेन्द्र कठाईट जस्ते टीकापुर के एउटा व्यापारी पुष्पराज देवकोटा फे सरकार के निर्णय के सीमा क्षेत्र में व्यापारी हुकरन राहत के महसूस होल बटुले बाटे। सीमा क्षेत्र में कररा नहीं हुई के ये आगे फे समेत क्षेत्र में भारत के टेकुनिया जैना खकरौला नाका में मनाइन के भारी भीड़भाड़ हुई निकल रहे। आबे ऊ भीड़भाड़ हटलबाओ इसे यहां के बाजार में समेत व्यापार हुई रलको नेपाली रूपया भारत जैना से फे रूकल। और व्यापारी सुनीता चौधरी के कहाइबा व्यापारी मीन बहादुर थनाल फे सरकार नेपाल भारत सीमा में लगाई पर्ना नियम सही लगैलक बटोले बाटे। टीकापुर दोग बाजे संघ फे भन्सार में कर कर पर्न गहती बार बार खकरौल नाका में जाके भन्सार कार्यालय यहां स्थित के बीओपी कार्यालय फे आग्रह करल से फेन कर हुई नहीं सेगल रहे। मनो सरकार से ये है कर करलक ये काम स्वागत योग्य रहल टीकापुर उद्योग वाणिज्य संघ के थह रहल बा। टीकापुर उद्योग वाणिज्य संघ के विषय में फे पहले फे सकारात्मक रहलो आगामी दिन में फे सकारात्मक हुई न कहती। एक कारण से सरकार है नियंत्रण देह पर्ना समेत बटोले बाटे सरकारी काम ही नियंत्रणता देना टीकापुर उद्योग वाणिज्य संघ के महासचिव प्रकाश तिमिल सिन्हा के कहाइबा। कैलाली के भसनी छ थावापुर के जनक चौधरी से हैंडीकैप उद्योग संचालन करल बाटे। एक वर्ष काठमाण्डू में काम करलक जनक से टीकापुर और थापापुर में उद्योग खोलल बाटे। जनक वहां के मामा मिल के संचालन करल उद्योग के लक सामग्री बनैना आवश्यक कच्चा पदार्थ विदेश से काठमाण्डू हुई निर्यात करल बाटे। उसके धागो उनके सीओ अस्तक मैट लगायत के कुछ सामग्री स्वदेश में मिलती रहल बटोले बाटे। यहां हथिया भेरी अस्तक एंजल परी औस्तक स्पॉट परी कुकुर लगायत के आकृति बनाईती रहल बाटे। यी सामग्री झोला बस कार आगे समेत झुरैना में प्रयोग हुई रलक। ओ सामग्री बनैना सिलाई ओ समेत सरसफाई के काम में टीकापुर में केल साथी औस्तक थापापुर में 30 मेहरू काम करती रहल बाटे। अब इनफे कामदार महिला के अभाव समेत रहल जनक के कहाइबा। उद्योग से 20 लाख लगानी करल बा। तमाम खाल के हैंडीक्राफ्ट समेत देश के तमाम शहर सहित के विदेश निर्यात हुई रलक बटोले बाटे। गैल वर्ष असोज से लगी शुरू हुईलक ई व्यवसाय में कतिपय महिला हुकरा दिनभर उद्योग में बैठ के काम करती बाटे। कल से कैयों घर में जाके समेत सामग्री निर्माण करना काम करल बाटे। महिला हुकरन के काम अनुसार आमदनी लेती रहल बाटे। फुर्सत के समय के सदुपयोग करती काम कर मिलना हो आमदनी फे समेत हुई न रलक ओर से सहज हुईल। गुलौरी के राममती चौधरी के कहाइबा। वहां के घर में काम ओरवा के समेत महीना में 15,000 सम कमैती बाटे। अधिकांश महिला हुकरा ज्यादादारी करना से फे उद्योग भित्तर बैठ के काम कर पाके खुशी लागल राधा चौधरी फे बटेले बाटे घर के काम ओराके बच्चा उकरन स्कूल छोड़ के महीना में 10,000 समेत कमैती बाटे उसे के प्रतिमा चौधरी फे आपने गांव ठाव में काम कर पाके खुशी लागल बटेले बाटे काठमांडू समेत काम करलक प्रतिमा है आजकल घरी में बैठ के काम करना सहज होती रहल बटेले बाटे। नेपाली कंग्रेस आज से सुर पश्चिम प्रदेश स्तरीय भेला धनगढ़ी में आयोजन करल बा विशेष महाधिवेशन पाछे कंग्रेस से प्रदेश तथा स्थानीय तह केन्द्रित भेला समेत करना लागल के हो भेला अटवार के संचलनमा भेलामा कंग्रेस सभापति गगन कुमार थापा लगायत के केन्द्रीय नेताहरूको सम्बोधन करना कार्यक्रम रहल बा कंग्रेस के सहमहामंत्री प्रकाश रसाइली स्नेही भेलामा प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण भेलामा 21 फागुनमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचन के विस्तृत समीक्षा हुइना बटोइल बा साथै स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि हुकरन के कार्य सम्पादन के बारेमा फे छलफल हुइना जानकारी दिइगेल बा। यी आगे प्रतिनिधि सभा निर्वाचन के क्रममा राष्ट्रपति थापा सहित के नेता हुकरा सुरपश्चिम के चुनावी सभा करना प्रयास करले से फेन आन्तरिक समन्वय अभाव के कारण कार्यक्रम नै हुइ सकल बटोइल बा। खोज घर माए घड़ी विश्राम विश्राम पाच फिर से भी सुनते रह सामुदायिक रेडियो टीका प्रफएम आदरणीय अभिभावक शिक्षक कर्मचारी प्यारा विद्यार्थी तथा शुभचिन्तक सबैमा नयाँ वर्ष 2083 को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ। यो नयाँ वर्षले यहाँको जीवनमा सुख शान्ति समृद्धि र सफलताको नयाँ ढोका खोलोस्। हरेक दिन नयाँ आशा नयाँ ऊर्जा र सकारात्मक सोचका साथ अघि बढ्ने प्रेरणा मिलोस्। खड्ग मेमोरियल सेकेन्डरी स्कूल तथा वर्गीस होस्टेल परिवार टिकापुर कैलाली।
1: के तपाईलाई किचन वायरिंग र पूजाका लागि कुनै पनि सामग्री चाहिएको छ? यदि चाहिएको छ भने ग्रीष्म टेरसलाई सम्झिनुहोस्।
2: ग्रीष्म टेरसमा पाइने सामग्रीहरू नलका नलकाका सामान नलकाका पाइप फरुवा कुटो कोदालो बञ्चरो हटब्याग थर्मस जर्किन पानी तताउने इलेक्ट्रिकल रड भान्साका लागि किचन ऱ्याक प्लास्टिकको सामान घर वायरिङका सामान पूजाका लागि सम्पूर्ण सामग्रीहरू पित्तलका भाँडाकुँडा ग्यास सिलिन्डर झाडु छाता हाम्रो यहाँ सुफद मूल्यमा पाइनुका साथै भरपर्दो र विश्वासिलो सम्पूर्ण सामान पाइन्छ। एकचोटि सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला। ग्रीष्मा टेडस टिकापुर कैलाली संचालक मदनराज देवकोटा स्थान 60 अस्पतालको ठेक्कै अगाडि सम्पर्क नम्बर 9849585808।
3: कर्णाली मावि टिकापुरमा भर्ना खुलेको सूचना।
4: नयाँ वर्ष 2083 सालको सम्पूर्ण अभिभावक विद्यार्थी शिक्षा प्रेमी महानुभावहरूमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै कर्णाली मावि टिकापुरमा शैक्षिक सत्र 2083का लागि कक्षा 1 देखि कक्षा 9 सम्म अंग्रेजी तथा कक्षा 6 देखि 9 सम्म नेपाली माध्यममा सिमिट सिटमा भर्ना खुलेको सहर्ष जानकारी गराइन्छ।
5: कर्णाली मावि टिकापुरका विशेषताहरू
3: बाल विकासदेखि कक्षा 8 सम्म अंग्रेजी र नेपाली माध्यममा पूर्ण रूपमा निशुल्क अध्यापन गराइने
4: कक्षा 9 देखि 12 सम्म नेपाली र अंग्रेजी माध्यममा पढाइ हुने र सिभिल इन्जिनियरिङ विषयमा पनि अध्यापन भइरहेको
3: कक्षा नर्सरीमा भर्ना हुन आउने बाल बालिकालाई निशुल्क पोसाकको व्यवस्था भएको
4: यस क्षेत्रकै एकमात्र प्राविधिक तथा साधारण शिक्षा प्रदान गर्ने संघीय नमूना विद्यालय
3: योग्य दक्ष अनुभवी तथा तालिम प्राप्त शिक्षक शिक्षिका द्वारा स्वच्छ शान्त बालमैत्री वातावरणमा पठन पाठन गराइने
4: कक्षा कोठा खेल मैदान स्वच्छ खाने पानी लगायतका पर्याप्त भौतिक पूर्वाधार भएको
3: निरन्तर रूपमा शिक्षण क्रियाकलाप सँगै अतिरिक्त क्रियाकलाप गराइने
4: कक्षा 1 देखि 5 सम्मका विद्यार्थीहरूका लागि स्कूल बसको व्यवस्था भएको
3: अंग्रेजी गणित विज्ञान जस्ता मुख्य विषयका लागि अतिरिक्त कक्षाको व्यवस्था भएको
4: इन्टरनेट सहितको आधुनिक कम्प्युटर ल्याब विज्ञान प्रयोगशाला तथा पुस्तकालयको व्यवस्था भएको
3: शिक्षण गर्दा प्रोजेक्टर स्मार्ट बोर्ड सीसी क्यामेरा लगायतका प्रविधिको प्रयोग भइरहेको
4: आधारभूत तहमा सम्पूर्ण दलित छात्र छात्रा अपाङ्ग तथा जेहेन्दार विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था भएको।
3: नर्सरीदेखि कक्षा पाँच सम्म सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई प्रत्येक दिन दिवा खाजाको व्यवस्था भएको।
4: सेनेटरी प्याडको व्यवस्था भएको।
3: विद्यालयको आफ्नै स्कुल बस र सुरक्षा गार्डको समेत व्यवस्था भएको।
4: भर्ना कार्यक्रम 2083 वैशाख 15 गतेदेखि बिहान 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म। कक्षा सञ्चालन 2083 वैशाख 21 गतेबाट।
5: सबै बालबालिकाको विद्यालयमा सहभागिता, स्तरीय शिक्षा प्राप्तिको सुनिश्चितता।
3: कर्णाली मावि, टिकापुर, कैलाली। थप जानकारीका लागि फोन नम्बर 091551411 र 98584426167।
0: सरकारले विदेश स्थित 15 छो नेपाली अवैधानिक वाणिज्य दूतहरूलाई पदमुक्त गरल्बा। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदकी कार्यालय सिंहदरबारमा शुक्रबार बैठल बैठकसे यी निर्णय गरल। सरकारकै प्रवक्ता अस्मित पोखरेल जानकारी दिलेबाट। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री समेत रहल पोखरेल राष्ट्रपति समक्ष आगामी वैशाख 28 गते हुइना दुपहरके 4 बजे बैठकमा संघीय सांसदकी दुनू सदनकी संयुक्त बैठकै सम्बोधन केलक। अनुरोध गर्न निर्णय गरल जानकारी दिलेबाटै साथै संघीय सदनकै उपस्थितिमा समेत आह्वानमा यी निर्णय गर्न उहाँ बटुलेबाटै। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनकी बाध्यकात्मिक श्रम महासन्धि 1930 सम्बन्धी 2014 के प्रोटोकल नम्बर 29 अनुमोदन केलक। संघीय सांसद समक्ष पेश गर्न निर्णय गर्नेबाटै अस्थकर्की अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनकै श्रम निरीक्षण सम्बन्धी महासन्धि 1947 नम्बर 81 फे अनुमोदन केलक। सदनमा समेत समक्ष पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गर्सकल्बा। सर्वोच्च अदालतले नेपाल र भारत बीचकै हुइलक लङ टर्म पावर ट्रेड इमिग्रेट 2024 के संघीय सांसद की दोनों सदन में जानकारी केला। पठैना सरकार के नाव में निर्देशनात्मक आदेश करलबा। समझौता विरुद्ध के रिट खारेज हुईला को डेढ़ वर्ष पास पूर्णपाठ सार्वजनिक करती। सर्वोच्च के समझौता के संविधान के धारा 289 अनुसार सांसद में अनुमोदन करना कहल बाकल से गर्न नै पर्न फैसला समेत करलबा। दुनू सदनकै जानकारी केलाक। सम्झौतामा पठाइना कलक आदेश अदालतकै आदेशमा उल्लेख करलबा। अदालतकै फैसला सँगै भारतसँगै दीर्घकालीन विद्युत व्यापार योजना है आगे बढ़िन डगर खुललबा। नेपालमा पश्चिमी न्यून चापे प्रणाली स्थानीय वायु के साथै देशकै पूर्वी भूभागमा लगे तल्लुक वायुमण्डलमा रहल न्यून चापीय क्षेत्रकै प्रभाव रहलबा। हाल मधेस बागमती गण्डकी प्रदेश लगायतकै कोशी लुम्बिनी कर्णाली सुदूरपश्चिम प्रदेशकै हिमालय पहाड़ी भूभागमा साधारणतया मौसम बदलनबा। कलसै बाँकी तराई भूभागमा आंशिक मौसम बदलनबा। कोशी बागमती लुम्बिनी प्रदेशकै कम स्थानमा मध्यम वर्षाकै सम्भावनाकै साथै मधेस गण्डकी कर्णाली प्रदेशकै एक दुई ठाउँमा मेघगर्जन चट्याङ सहित हल्का वर्षा हुई रहल मौसम पूर्वानुमान महाशाखा से जनाइलबा। आज दुपहर के हिमालय पहाड़ी भूभाग में साधारणतया मौसम बदलनबा। कलसे तराई भूभाग में आंशिक मौसम बदलनबा। कोशी बागमती और गंडकी प्रदेश के हिमालय पहाड़ी भूभाग में कुछ स्थान तथा बाकी प्रदेश के पहाड़ी तथा हिमालय भूभाग में कम स्थानमा मेघगर्जन चट्याङ सहित मध्यम वर्षा हिमपातकै सम्भावनाकै साथै तराई भूभागमा एक दुई स्थानमा मेघगर्जन चट्याङ सहित हल्का वर्षाकै सम्भावना रहल महाशाखाले जनाएलबा। खोजखरमा एक गरी फेन्से विश्राम विश्राम पाछे फेर्सै बी सुन्थे रवि सामुदायिक रेडियो टिगाप्र एफएम। नयाँ वर्ष 2083 सालको सबै शेर सदस्यहरूमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ। रानी जमरा कुलरिया स्थित भण्डार गृह सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको साधारण सभा सम्बन्धी जरूरी सूचना। रानी जमरा कुलरिया स्थित भण्डार गृह संचालन तथा व्यवस्थापन समिति टिगापुर कैलालीको पहिलो साधारण सभा तपसिलको मिति स्थान र समयमा हुने भएकाले पूर्ण पार्षदज्यूहरूलाई आफ्नो परिचय खुल्ने कागजात सहित यसै सूचनालाई आधार मानि साधारण सभामा अनिवार्य उपस्थितिका लागि हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। साधारण सभा हुने मिति 2083 साल वैशाख 27 गते आइतबार। कार्यक्रम हुने स्थान मूलकुला समितिको सभाहल। समय बिहान 10 बजे। सम्पर्क नम्बर 0915610022 र 98683453562। अध्यक्ष कुमार राज शाही, सचिव परशुराम महतो तथा रानी जमरा कुलरिया स्थित भण्डार गृह संचालन तथा व्यवस्थापन समिति टिकापुर कैलाली।
6: जब जब गर्मी महिना आउँछ तब तब अमूल्य ब्रान्डको आइसक्रिमहरूको याद आउँछ। म्याङ्गो, लिची, कोला, स्ट्रबेरी, कुल्फी, चोकोबार, चोको फनबार, आहा, कति मिठो! मलाई त साह्रै मन पर्छ। यति मात्रै कहाँ हो र, शुद्ध दूधले बनेको अमूल्य ब्रान्डको आइसक्रिमको खोवा कुल्फी, कर्नेटो र पार्टीहरूको लागि फ्यामिली प्याक, पार्टी प्याकका सुविधा हुनुका साथै अन्य विभिन्न फ्लेभरका आइसक्रिमहरू र सादा आइस बलक पनि उत्पादन गरिन्छ। मैले त वर्षेनी खान्छु। अब खाने पालो तपाईँको जुन ठाउँ जानुहुन्छ उही ठाउँ पाउनुहुन्छ अमूल्य ब्रान्डको आइसक्रिमहरू। एकचोटि खोजी खोजी खाऊ है।
7: यदि तपाईँ अमूल्य ब्रान्डका आइसक्रिमहरू बिक्री वितरण गर्न चाहनुहुन्छ भने धरौटी राखेर डिप फ्रिज उपलब्ध गराउने सुविधा रहेको छ। सम्पर्कको लागि बर्दादेवी डेरी उद्योग टिकापुर 1 ब्लक नम्बर 13, सम्पर्क नम्बर 98584899455 र 98673969622।
8: रियल मिल्क, रियल आइसक्रिम, अमूल्य आइसक्रिम, खोजी खोजी खाऊ यी ब्रान्डका आइसक्रिमहरू जहाँ पनि उपलब्ध छ।
9: वर्षेनी विश्वभरि नै लगभग 14 करोड बाल बालिकाहरू बाल विवाहको शिकार हुन्छन्। किशोर किशोरीको 20 वर्ष नपुग्दै गरिने विवाहलाई नेपाल सरकारले बाल विवाह ठहर गरेको छ। शारीरिक, मानसिक र व्यावहारिक अपरिपक्वताका बावजुद गरिने बाल विवाहले निम्त्याउने जोखिमहरू जस्तै अशिक्षा, असमानता, बिग्रदो स्वास्थ्य, एचआईभी एड्स, बलात्कार, घरेलु हिंसा, बहुविवाह, आत्महत्या लगायतका अन्य थुप्रै समस्याहरू आउन सक्छन्। नेपालको कानून अनुसार बाल विवाह सामाजिक अपराध हो। बाल विवाह गर्ने, गराउने र सामेल हुने सबैलाई कसुर हेरी 3 वर्ष जेल र 30,000-75,000 सम्मको जरिवाना सजाय तोकिएको छ। बाल विवाहको जोखिम अझ उच्च रहेको हुँदा समुदायका अभिभावक, शिक्षक, समाजसेवी, बुद्धिजीवी, राजनीतिज्ञ लगायतका सबैमा आफ्नो समुदायमा बाल विवाह नहोस् भनी सचेत रहन अपील गर्दछौ। बाल विवाह विरुद्धको अभियान।
10: जानकी गाउँपालिकाद्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
11: बाबु, ए बाबु, काल मनिष मेडिकलमा जाइस् त?
12: मै नै जाइ, उहाँ आफन अनुहार बिगर्के घर से बाहर नै निकर्छु।
11: उहे मारे त तुहिन उहाँ पठाइदो। यहाँ हेर, यी पत्रिकामा लिखल बा मनिष मेडिकलमे अब छाला सम्बन्धी समस्या रहल बिरामी हुकन बढिया डाक्टर होइसे उपचार हुइत वै तोर समस्या फेन अस्ते बा जइबे तो समाधान हुइ जाइ।
12: ए हो दादु, अपन अनुहार बिगर्के परेशान रहु तब तुमै अबही जाइम।
13: याद करबी, मनिष मेडिकल हल टिकापुरमा प्रत्येक महिना के दोस्रो शनिबार काठमाडौँ के वरिष्ठ छाला, यौन, कुष्ठ तथा सौन्दर्य रोग विशेषज्ञ डाक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनिष मेडिकल हल टिकापुरमा पुरान से पुरान अनुहारमा रहल चाया, पोटो, डन्डीफोर, दाँत, खुजली, भुटला झर्ना, कपार के तालु खुल्ना, डेन्ड्रफ, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नै हुइल घाउ, खतिरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होइति रहल बा। सम्पर्क मनिष मेडिकल हल, अस्पताल रोड, टिकापुर। फोन नम्बर 98600-71024 ओ 98046-77417।
0: विश्राम पाछ फेर से स्वागत बा। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय मनसुन ऋतुमा कम पानी पर्न सम्भावना के कारण किसानहरूलाई विशेष सतर्कता अप्नाइन आग्रह करल बा। मन्त्रालय से कम पानीमा मजा उत्पादन हुइना सुक्खा 100 लैके सुक्खा छ जात के धान समेत प्रयोग गर्न सिफारिश गरल बा मन्त्रालय आकाशे पानी संकलन वस्तका पोखरी निर्माण हो जलवायु मैत्री संरक्षित कृषि प्रविधि के अपनैना समेत किसान उक्रण सुझाव दिवा यी वर्ष मनसून ऋतुमा देशका अधिकांश स्थानमा सरदर से कम पानी पर्न सम्भावना देख पर्ला

0: आठौं संस्करण के साप महिला चैंपियनशिप खेलक नेपाली महिला टोली कुछ दिन से प्रशिक्षण करते रहलबा। राष्ट्रीय खेलकूद परिषद से समेत एन्फा निलंबन हुईनाओ अंतर्राष्ट्रीय फुटबल के सर्वोच्च संस्था फिफा में समेत निलंबन के खतरा में रलक अवस्था में नेपाली महिला टोली भर समेत साप जितना लक्ष्य के साथ तैयारी में जुटलबा। यह आगे खेल के सात मध्य छठो फाइनल में पुग्ल सफेन सदिमान उपविजेतामय समेत रुक्ति आयल नेपाल सदिमान उपाधि के लक्ष्य धरल सफेन उच्चाहना पूरा करनी सकल के हो। ई पटक साप चैंपियनशिप में मे 25 से लेके जून 5 सम जेठ 11 से लेके 22 सम भारत के गोवा स्थित मरगोवा में समेत रहल जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हुईना कहलबा, जहां दक्षिण एशिया के पाकिस्तान बाहेक के छठो टोली प्रतिस्पर्धा के तय करतीबा। वहां अनुसार खेल तालिका फिर सार्वजनिक हो सकलबा। मनो नेपाली फुटबल के आंतरिक विवाद कर लगोर्से मैदान में खेलना खिलाड़ी हुकरन भर मानसिक रूप में असर पर सकना कहलबा। यही समाचार संगे खोज खबर रॉयल जैना से पहले खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक फिर से। सरकार के भंसार में कर्रा करल पास से कैलाली के व्यापारी हुकरन के समर्थन टीकापुर में व्यापारी खुशी। टीकापुर भसनी के थापापुर में हाथ से गुड़िया और जनावर के आकृति बना के 90 से ढेर मेहरू रोजगार मासिक 10 से लेके 20,000 सम आमदनी करती। पहाड़ो हिमाल में मध्यम वर्षा हिमपात तराई में चट्यांग सहित हल्का वर्षा की संभावना। वर्षा खड़ेरी के जोखिम के संभावना रले को से सुखा जात के धान लगेना किसान उकरण कृषि मंत्रालय के सुझाव। लिटा बकलक थारू भाषक खोज खबर अत्रै और समाचार 12 बजे मध्याह्न खबर सुन सकै। अब एक खोज खबर से मैं रतन चौधरी विदा हुई हूं। सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम सुनतिर विराम राम।
1: आरोग्य मेडिकल सेन्टर एण्ड क्लिनिक टीकापुर में छाला यौन तथा कुष्ठरोग विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारे को सूचना। छाला यौन तथा कुष्ठरोग विशेषज्ञ डाक्टर आरोग्य मेडिकल सेन्टर एण्ड क्लिनिक टीकापुर में
2: जेठ 2 गते पहिलो शनिवार
1: आउने भएकाले समस्या भएका बिरामीहरूले सम्पर्क गर्नुहोला। आरोग्य मेडिकल सेन्टर एण्ड क्लिनिक टीकापुर में उक्त दिन दिइने सेवाहरू छालामा एलर्जी आउने चिलाउने दुख्ने घाउ दुबीको समस्या लाटो र फुस्रो दाग देखिने पुरानो भन्दा पुरानो छालाको घाउ ठिक नहुने समस्या इक्जेमा सोब्रायसिस गोलो दाग बारम्बार उपचार गर्दा ठिक नहुने छाला सम्बन्धी रोगको समस्या पुरुष र महिलाको गुप्ताङ्गमा दाना आउने चिलाउने धातु खस्ने सेतो पानी बग्ने यौन दुर्बलता शीघ्र पतन जस्ता समस्याको जाँच र उपचार गरिने कपाल चिलाउने चाया पर्ने डेन्ड्रफ कपाल झर्ने रौ नजम्ने तालुको रौ झर्ने समस्या अनुहारमा चाया डन्डीफोर चिरा परेको फुस्रो र कालो दाग देखिने समस्या अनुहार खस्रो हुने फुट्ने चिरा पर्ने अनुहार बाङ्गो हुने समस्या।
3: साथै प्रत्येक दिन साँझ 4 बजेदेखि भिडियो एक्सरे सेवा उपलब्ध छ।
2: आउने दिन जेठ 2 गते पहिलो शनिवार
1: आरोग्य मेडिकल एण्ड क्लिनिक अस्पताल रोड टीकापुर 1 कैलाली। सम्पर्क नम्बर 9868000008 र 9825677772।
0: नयाँ वर्ष 2083 सालको सबै शेर सदस्यहरूमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं। रानी जमरा कुलरिया स्थित भण्डार गृह सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको साधारण सभा सम्बन्धी जरूरी सूचना। रानी जमरा कुलरिया स्थित भण्डार गृह सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समिति टीकापुर कैलालीको पहिलो साधारण सभा तपसिलको मिति स्थान र समयमा हुने भएकाले पूर्ण पार्षद ज्यूहरूलाई आफ्नो परिचय खुल्ने कागजात सहित यसै सूचनालाई आधार मानि साधारण सभामा अनिवार्य उपस्थितिका लागि हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। साधारण सभा हुने मिति 2083 साल वैशाख 27 गते आइतबार। कार्यक्रम हुने स्थान मूलकुला समितिको सभा हल। समय बिहान 10 बजे। सम्पर्क 0915610022 र 9868343562। अध्यक्ष कुमार राज शाही सचिव परशुराम महतो तथा रानी जमरा कुलरिया स्थित भण्डार गृह सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समिति टीकापुर कैलाली।
4: लैंगिक हिंसा प्रभावितहरूको गुणस्तरीय बहुपक्षीय न्यायिक सेवाका लागि टीकापुर अस्पतालमा रहेको एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र ओसीएमसीसँग सहकार्य गरौं।

चोटो मोबाइल नराई करने के लिए हरू I don't like तो र दिल मा कहीं तो प्यास कर किन्हीं की साथ में योगा कैंप को भावी से साथ में भनु गर्ल फ्रेंड को

0: कबू का पिए रही था, कबू पेंसिल ले रही था, कबू झोले फटाका आजी था, का कना हो बाबा फिर उस टपाटी गटीलो ठाउं से झोला आन लसे तो लड़का सामान नहीं हरे।
1: ओहो ये बुढ़ालिक में का हुई थी, जरम भर भर भर आई थी रहत।
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कही था, कबू पेंसिल हेरा कही था, कबू झोले फटा कही था, बढ़िया ठाउं से झोला लाना नहीं चिकठो।
1: अरे कहाँ से ना नाम था,
0: कहाँ से लन बो, वो तो कहाँ हो टीकापुर में रलक रट गई यहाँ झोला उडोक में से, वहाँ झिंगलान दीदी कटरा सुगर झोला आन लाटी ना, कबू लड़का कहाँ पिए रही थी, ना कबू पेंसिल रही थी, ना झोला फाटल हुई थी, कहिए आनल झोला जस कटरस बाटिन, ये बुरहक ढंग कबू पसल छान कर ना झोला नहीं आना से आकर ठुई।
1: लिया लिया मैं अब भी जाइबू रट गई यहाँ झोला उद्योग में, रट गई यहाँ झोला उद्योग, झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत, जैसे स्कूल बैग, कैरिंग बैग, फाइल बैग, लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए, पुरान बिगड़ा झोला है मरम्मत करा जाए, एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी।
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया, संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373।
3: गरेको भए हैन गरिहाल्नुस्, यी सेवाबाट सहारा हेल्थ इन्स्योरेन्स।
4: अस्पताल भर्नाको खर्च, ल्याब शुल्क र अन्य मेडिकल बिलसँग अब डराउनै पर्दैन, सहारा हेल्थ इन्स्योरेन्सले दिन्छ भरपर्दो स्वास्थ्य बिमा कभरेज, न कुनै फाइनान्सियल तनाव, न त क्याशकै झन्झट, सिधै तपाईँको ई सेवा एपबाट।
3: ई सेवाबाट सहारा हेल्थ इन्स्योरेन्स,
4: शिखर इन्स्योरेन्सको सहकार्यमा
3: अस्पताल खर्च सहाराले गर्छ,
4: ई सेवा सबै सधैँ सँगै।
5: 80% रोगहरू पानीकै कारणले लाग्छन्।
6: थोपा थोपामा शुद्धता, अत्याधुनिक अमेरिकन यूभी र ओजोनेटेड सहित रिभर्स ओस्मोसिस प्रविधिबाट प्रशोधन गरिएको
7: प्योर ड्रिंकिंग वाटर एक्वा शीतल बोतल।

0: सरासर अङ्गनामा ल्याउन पुग्दछ हिँडेर
1: एक गति न हाम्रो सहयोग कैखल ल्याङ्की बाटी बिहान मोटरसाइकल घुमाएको धर्ने गरी न
0: बैठा बैठा रम्यान रसरस मर पार्छ बैठाई ऊ एकजना ब्रह्मान पकर्क बैठी उपचार केन्द्रसम्म पुगाइबेर ब्रह्म्या बेहोस हुइसक नापुला कोर्से पाछसे पकर्क बैठ पर्थका
2: ब्रह्मान अगर हुन कैकमै पकर्क बैठा टु सुनिलजी आफ्ना जैसिन मोटरसाइकल स्वयं सेवक हुलक कारण सर्पडंसक ब्रह्म्यान उपचार केन्द्र लैजिन सजिलो हुल बा
0: एम्बुलेन्स औरा चार

0: कानून कलिक भ्रष्टाचार रोक नहीं सकी, जब सम हमरे सबको भ्रष्टाचार विरोधी नहीं हुई भी भ्रष्टाचार करुया मनई न खुलके विरोध करी। भ्रष्टाचार रहित सुशासन युक्त देश निर्माण करक लाख सबको जाने सहयोग करी।
1: अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग के कार्यालय महेन्द्रनगर कञ्चनपुर से जनहित में जारी सन्देश।
2: आज तिमी मेरो वरिपरि किन घुम्दैछौ छोरी?
3: आमा मलाई सिक्री बनाइदिनुस् न, लाउन कस्तो रहर लाछ।
2: पैसा पनि त हुनु पर्यो नि छोरी, फेरि पढ्ने लेख्ने मान्छेले।
3: मेरो खुतुर्के छ नि आमा, मैले कति धेरै पैसा जम्मा गरेकी छु, फेरि सुन त पछि पनि काम लाउन सकियो नि।
2: कुरा राम्रै हो छोरी, तर कसकोमा जाने हो त?
3: न्यू असम जालपा देवीमा कस्तो राम्रो गहना पाउँदो रहेछ, अस्ति नै हेरिसके मैले त।
4: न्यू अछाम जालपा देवी ज्वेलर्स, सिद्धार्थ चोक टिकापुर। न्यू अछाम जालपा देवी ज्वेलर्समा नयाँ नयाँ डिजाइनका विभिन्न गर गहनाहरू, माइली तिलहरी, हार, झुम्का, छड्के तिलहरी, बाला, चुरा, चन्द्रमा, जन्तर, चन्द्रहार, इन्डियन मंगलसूत्र, औठी, सिक्री, बिना रासनका गर गहनाहरू पाइन्छन्। साथै चाँदीका सम्पूर्ण भाँडाकुँडा पनि उपलब्ध छन्।

वहीँ मन फ्वाङ पर सेप्ठ चपक्क नि लग्न हुई था उसी ठाउँ मसी साँग छिर सेप्ठ वो घर को ऊपर छट ठा गांव में केकरो खर या खप्र छानेर ठन खप्र घर ठन एल्बेस्टर या आजकल यूबी भेस के बनाए घर फे बाटन याकर ऊपर रहल फ्वाङ घन माटीले टुङ्गे चाहे साँप अपनी बिला नि बने त बिला बनुवा त मुस हुई ऊ बिला हन माटीले बन्द कै दिए पर भिटा खप्रक बीच में जो खाली ठाउँ रठा वही न कच्चा माटीले टुङ्गे

0: 哎呦，老弟，你哪里的？
1: 一里。
0: 把我吃了，把我。你老弟来偷看管的是一里的？在这里的咱可是不一根筋嘛了他。这块这边的是块看你摆的起码一包了他。你家吧，把他的。玩牛，伢哪个？伢哪个？伢伢。
1: 我你个
0: 这里是什么？我红姑妈的病毒，这这个什么买了的毒的？阿伯把壳开开你，这里是什么？干净的果然没事，你可以。
2: 耶，我你不在乎，没在乎，不可能，那去干净的。
0: 你不在乎啊？什么？你个真卡病毒？啥子么？生个呀？不会得的，哪个来着？生个呀？
3: 你不在乎？咱只是跟他办好客户，你进来混蛋。
0: क्या करना था उनको मार संगरिया एक बार का चोला हो आशी खुशी जीना था हो ब्यूटू बेस्टी करो मैं ही गरीजा गांव से दूर ले जाकर छोड़ दें
1: नहीं कहाँ छोड़ना बात बटवाई थी बाजारू यहाँ तो मारे परल ना कि औरे जनन थे काटी से
0: कहाँ मरना बात बटवाई थी बुद्राम काका एक अभी तो जीना अधिकार बात अस दे जैसी का हमार जीना अधिकार बा नहीं मारा वे जी मैं यहाँ उठी दूर ले जाकर छोड़ दें
2: वो तो बुद्राम काका बताने को ना एकदम सही बात हो शे साफ तो अपना मन फायदा करना जात भी नहीं
1: कसी फायदा करता जे
2: कसी को भी ताका अपना खेती पाती करती वनी बाली नाली नुकसानी के करता कहीं जो मोसने भी तो वो ये साफ मोसन खा देता अपना बाली नाली नी बोसन कहीं जो शे साफ तो अपना खतरा महसूस भी लेती के ना कटना तो होगी ना कि कहाँ कटता था
3: वह था वह वर्ष यह कारण दे कर व्यक्ति स्थापन मारा नहीं हुई
4: बिंदु हेरोटा नथका का घर आजा पाजा कटरा जो छपा था बरका बरका घास दोसर वहां पनवार
2: वो टका हूं कुमार ये कारण ले कर बिर साप आई थी का घर में ना
3: होनी वो टके पर व्यवस्थापन कर पड़ल अनि घास पात सब कु काटा पड़ल वो खारा पड़ल कई का समझाई

0: के सर्पदंश संबंधी आकुर लौ जानकारी पक्का फिर पाजेने बात। सहभागी श्रोता ये विषय वस्तु हो छलफलक संग रेडियो कार्यक्रम जीवन संदेश का आज प्रस्तुति ये दोसरा भाव से मई पुष्पा
1: वो मई देखराज बिरा मामटी और अंक में सापन का दसाई मसी बस्ना उपाय विषय में और नौ जानकारी आज बिराठी।

0: सौन्दर्य रोग विशेषज्ञ डाक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाट खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा।
1: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 98600 71024 ओ 98046 77417।

0: ଅରିଓ ଫୁଟତ ବାଇଜମ୍
1: ସାମୁଏଲ୍ ଜୁଏଲର୍ସ सुनसादीका सम्पूर्ण डिजाइनका गरगहना बनाउनका साथै सुनसादी खरिद बिक्री पनि गरिन्छ। प्रोप्राइटर तिहारी सिंह सुनार, सम्पर्क नम्बर 9868-44-1208, 9846-39-261।
2: ओइ रजनी, वहाँ बासक नम्बर लक्ष्य बा देखाउ त, कस्तो देखाउ त?
0: मुर्दिन दाना देना जाला म सात्र लक्ष्य खाजा दिए अब न।
2: एकफो सपवाका मुर्दिन फारक छ। लक्ष्य से जुडेले से बक्था कि आनो हरि छ त।
0: तापन घिस्काई चलाई नहीं हुई थी नहीं तो अमन दस सर बिहन घर भीतर आए लागी कल से भगई दी
2: पारक भीतर पेट का मुर्गी मुआडी व खादी कहीं का भगाई खुद लखो का
0: आरम कीड़ा फटिंदा मुझ सांप फिर निशा कर कहीं का फलाम को जारी लगा बात तब पा मुर्गी खेती बुगाई नहीं सेखी बिहन अपना न दाठी दूर रिना
2: हो बिना तो का करना हो सबको देखती की डर लागल बिना रही देव सब तो अपन घूम का बारी वो चल गिनता
0: हमारे खेल सांपन से डरे ना नहीं बोली मुखर थे अमन से डरे था यदि क्यों जान अनजान में चलाइ लगी पति रक्षा करत लाग व अपन बचाव करत लाग शाम दस न कर था
3: सापन से दूर रही सापन रिस नी लगाए व नी जिसके साप मन देख डरे था नी चलाख दूर रहसी साप नी दस्त तर मुकुर खैना ख्वाज बाहर निस्कल जाना मग घास काटा बेल ख्याल बेल ज्ञान बेल छू बेल से मन वही मारक लाग बाटा कना समझ कर पति रक्षा करना क्रम में साप दस लाख रठ मन सापन व्यक्ति की मारक लाग रठ
4: सर्पदंश सम्बन्धी भर पर्दो हो सही जानकारी प्राप्त गर ओ लगभग सर्पदंश उपचार केन्द्र कहाँ बाकै छ पत्ता लगाइक लाग आधिकारिक वेब पेज www.snakebitenepal.org मा हेर सेती था
5: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश
6: आरएमई स्कूल टिकापुरमा विद्यार्थी भर्ना खुल्यो
7: नयाँ वर्ष 2083 सालको पावन अवसरमा सम्पूर्ण अभिभावक तथा विद्यार्थीहरूमा सुख शान्ति समृद्धि र दीर्घायुको हार्दिक मंगलमय शुभकामना सहित आरएमई स्कूल टिकापुरमा नयाँ शैक्षिक सत्र 2083 सालका लागि प्ले ग्रुपदेखि कक्षा 9 सम्म भर्ना खुलेको सहर्ष जानकारी गराइन्छ।

सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएमके सँझै 5 बजे थारू भाषाकै खोज खबरमा अभिनुकन स्वागत खोज खबर सेमै सीता चौधरी के राम राम अपने उक्रा सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ट्ज के संग अनलाइनमा www.tikapurfm.org मोबाइल एप हाम्रो पात्र हो नेपाली पात्रमा फेसन डिटेलबाटी खोज खबर शुरू करी खबर के मुख्य शीर्षक से बेदवास उद्योग महिला हुकन गाउँमा रोजगार कांग्रेस सुदूरपश्चिम प्रदेश स्तरीय भेलामा प्रदेशको कैयालीकी सभापति अनुपस्थित अनलाइन प्रणाली संघ भारतीय सवारी निगरानी कराई ओ रूस युक्रेन युद्ध विराम विस्तार हुने के ट्रफ की अपेक्षा टीकापुर नगरपालिका 7 सतीमा खुलक तिलंगा बेदबास उद्योग महिला हुकनकेला गाउँमा आयोजन के डगर खुललबा मलेसिया भारतमा काम गर्के शिव शिखलक भरत लाल विश्वकर्मा बेदबास उद्योग खुलक भुलबा छ यहाँ के महिला केलाक अवसर खुललबा

बहादुर शाह अपन कैबिनेट के मंत्री सहित विमान स्थल पुग्ल रहे तर सुरक्षाकर्मी मुख्यमंत्री शाह भित्र जाइदेना अन्य मंत्री हुकन के विमान स्थल भित्र थापासंग भेट करने पैला मुख्यमंत्री मंत्री हुक्र स्वागत पुगलक देउबा पछि प्रदेश सभापति वीरबहादुर बोलायर व कांग्रेस कैलाली के सभापति नारायण दत्त भट्टाफे विमान स्थल देखिल सुरत के अनुसार प्रदेश सभापति बलायर भिलामा सहभागी नै हुन सम्भावना रहलबा कैलाली सभापति भट्टाफे कार्य व्यवस्था के कारण कार्यक्रम में सहभागी हुई नै सकला गोटिलोबाट राष्ट्रीय सभा सदस्य समेत रलक भट्ट राजनीतिक कारण नै हो कि संसदीय कार्य व्यवस्था के कारण काठमाडौँमा रलक स्पष्ट पर्लबाट नेता हुकुन के अनुसार देउबा पछि के अन्य कुश जिल्ला सभापति फे भेलामा सहभागी नै हुन सम्भावना बा कांग्रेसकी दुई दिनसम्म चेन्नई भेलामा प्रतिनिधि सभाकी निर्वाचन परिणाम तथा स्थानीय तहके जनप्रतिनिधि हुकुनके काम कार्यवाही बारे समीक्षा हुन जनेलबाट नेपाल प्रवेश गर्न भारतीय सवारी साधन के ऊपर निगरानी थप प्रभावकारी बनलवा अभिलेख व्यवस्थापन अनलाइन प्रणाली के अभाव के कारण प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकलक भारतीय सवारी व्यवस्थापन प्रणाली अब डिजिटल माध्यम से कड़ाई के संग लागू गर्न लगलबाट भरुवा भन्सार कार्यालय के प्रमुख भन्सार अधिकृत हरिहर पौडेल के अनुसार नेपाल सरकार भारतीय नम्बर प्लेट के सवारी साधन के लाग तोकलक समयमा शुल्क सम्बन्धी व्यवस्था नयाँ नै हो कि विगर्से नै लागू रहलक कानून प्रावधान हो कै के तर अनलाइन प्रणाली नै हुलक कुन सवारी कैचो नेपाल प्रवेश गर्न कहिया बैठक के समय सीमा नगलको नै नगलक से तथ्यांक व्यवस्थित रूपमा धरना कठिन नै हुलक नियम पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकल नै हो भारतीय नागरिक नेपालभर भ्रमण गर पैना हुलसे फे प्रतीकीय प्रयोजन के लाग नेपाल भित्र न भारतीय सवारी साधनमा फे निश्चित समयमा तोकलक उहाँके कहिबा उहाँके अनुसार कार जीप मोटरसाइकल लगायत प्रतीकीय सवारी साधन के एक वर्ष भित्र एक चोके बार बार करके जम्मा 30 दिन भित्र नेपालमा बस्ना पैना कानूनी व्यवस्था भन्सार अधिकृत पौडेल के अनुसार सीमानाकामा यही व्यवस्था विगर्से नै लागू गरिएला

0: कर्मी से क्षय रोग तथा कुष्ठ रोग संबंधी सेवा फेले जाए। संपर्क सत्कार पोली क्लिनिक प्राली, गुम्बा रोड, गोलचोक लखहट, टीकापुर कैलाली। फोन नंबर 0915605095 ओ मोबाइल नंबर 9848423359।
1: शरीरमा लाल वा फुस्सर छुअबेर ठहानी विना स्पर्श शक्ति हेरेलको निखुन्जिना दाग देख पर्लसी हात द्वारा झमझम गर्न

0: 41 43 26।
1: आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा छाला यौन तथा कुष्ठरोग विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारेको सूचना। छाला यौन तथा कुष्ठरोग विशेषज्ञ डाक्टर आरोग्य

0: कर्म रहल बीस असर निकलत कना निको जितिहा मुअल सपा मुअल देख पना सपहना नंग तहा सारे पकड़ा नी बीस
1: सर न सपो देखना से का करना
0: सपा मुअल देख पना से थे जात से मुअल नी रह सकत अथवा मुलक कुछ देर पास संके सपा दस सकत वह उससे मोल अवस्था में फिर सबको हाथ से चलाए नहीं हुई बेन तो इतना मल अच्छी ले चला का मोल नहीं मोल कहीं का जाना सीखी था
2: मोल सापन से सावधान रही मोल वह मार्गी सपोहना पकड़ना व खेलना जिन करी मुलक कुछ बेर बास

0: दादू भैया दीदी बहिनी हुकन म हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त करती।
1: आत्महीन टिकरी वो घोंगी बड़ा खेना लगता कहाँ जीना हो ये टीकापुर में कहाँ मिल।

बुद्धत्व माजता ततैन बुद्ध बुद्ध तिमी बुद्ध बुद्धि का हो महाबले न्याय संस्थापनार्थाय गर्यौ खलबल खलबले।

0: समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम, टिकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज।
1: हरि शरणं ओम हरि शरणं।